0: जी हाँ, मोटर कार का तो मालूम नहीं, लेकिन आपको आपके बंगले तक पहुँचाएंगे जी यानी मॉर्गेजेस के मयंक भटनागर जी। हर तरह की मॉर्गेजेस में करते हैं स्पेशलाइज, वो रेजिडेंशियल हो, कमर्शियल हो, प्राइवेट हो, फर्स्ट या सेकंड मॉर्गेजेस, और या फिर आप हैं फर्स्ट टाइम होम बायर। मयंक भटनागर जी 6477022023 6747702 V23।
1: लाइसेंस नंबर
2: 10394। तंदूरी तंदूरी खाना खाना है ते तंदूरी बॉयज ही जाना है। बड़ा स्वाद वाला फ्लेवर्ड फूड मिलता है। चिकन टिक्का, तंदूरी श्रिंप, तंदूरी फिश, मलाई चाप, तंदूरी मोमोज, ते हां पनीर दी भुर्जी बिल्कुल ना भूलिया जे। लोकेटेड ने 7171 टोरब्रम रोड दे उत्ते, ते दूसरी लोकेशन मैकलोगलन एंड क्वीन ते 905-956-2111 तंदूरी बॉयज।
3: मैनू पता तुहाडी जिंदगी खुशहाल है ते खुशहाल ही सोहनी लगती है, पर जेकर कोई सीरियस एक्सीडेंट हो जाए या फिर किसी तरह की क्रिटिकल इलनेस का हो जाओ शिकार, तो कौन भरेगा तुहाडे घर की मॉर्गेज, कित्थों आएगी इनकम, किवें चलेगी जिंदगी की गड्डी अगे। अपनी इंश्योरेंस जरूर करवाओ, कॉल करो उमरप्रीत चावला नू, जिन्हां तों मॉर्गेज इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल इलनेस, डिसेबिलिटी इंश्योरेंस करवा सकदे हो, ते नाल ही विजिटर वीजा इंश्योरेंस, सुपर वीजा, ट्रैवल इंश्योरेंस, आरईएसपी ते होर इन्वेस्टमेंट्स लई। हुणे करो कॉल उमरप्रीत चावला नू 6474461616। उमरप्रीत चावला।

0: रहा हूं। ताप गया प्रभ आप मिटाया, जन की लाज रखाई, साथ संगत दे सब पल पाए, सतगुर के बल जाई। हलत पलत कब रोवे सवारे, हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया।
1: गल कर लगे दिल का सिद्ध कर लगे, सुन के सुन।

परवाने, ताप छोड़ गया परवाने, गुरपुर हैरानी सन सच्चे की ताकी, परमेश्वर आप हुआ रखवाला, सात सहज सुख किन महे उपजे, मन हुआ सदा सुखाला रहा। हर हर नाम दियो दारू, तिन सगला रोग दारू, अपनी कृपा तारी, तिन सगली बात सवारी, प्रभु अपना बिरध समारिया, हमरा गुण अवगुण ना बिचारिया, गुर का सबद भयो साथी, तिन सगली लाज राखी, बोलाया बोली तेरा, तू साहेब पुनी गहरा,

कत्पुनि पै गुन गाए दुर्द गया हर नाम ते आए रहा सबने थाई रव्या आद जुगाद जाता बड परता गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब खाए बूठे सब सुख पाए सतगुर टूटे।

रोग गए सगले सुख पाए, गुर दुख काट्या दीनो दान, सफल जन्म जीवन परवान रहाओ। अखंड कथा अमृत प्रभ वाणी, कहो नानक जब जीवे ज्ञानी। बिलावन महला पंचम, साथ पाई गुर सतगुर पूरे, सुख उपजे बाजे अनहद तूरे रहाओ। ताप पाप संताप मिना से, हर सिमरत किल्विक सबना से, अनत करहो मिल।

शिखण्डिजः भुजौ मे सुभुजः पातु हस्तौ नीलोत्पल प्रभुः पातु मे हृदयं कृष्णः कुक्षिं शुष्कोदरस्तथा कटिं मे विकटः।

0: अच्छा मानो द्वापर वेडिंग स्टोर।
1: यहाँ से आपको ढाका चुन्नी मेहंदी जागो मिलनी और बादाम सिंदूरी

समोसा एंड फ्री फैक्ट्री जिथे भाजी दिया सारी आइटमा $4.75 पर पाउंड तो शुरू ने बेसन पिस्ता रसगुल्ले और जस्ट $5 पर पाउंड तो आते इन्ने साला दे परोसे आते विश्वास कारण कस्टमर्स एप्रिसिएशन सेल 2026 100% कैनेडियन मेड टॉप क्वालिटी स्वीट्स और 10 लोकेशंस तो सर्व करते ने 2 इन क्रैम्पटन 1850 अर्जुन रोड ईटोबीको वधेरे जानकारी लिए कॉल करो 416-213-1115 416-213-1165

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यार का स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, और आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मौसम है, लॉन्ग वीकेंड है। अभी आप जानते हो कि आपके लिए अभी अगस्त का महीना गया है, तो अभी साल ऐसे हाथ से कैसे सरकता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने तो बहुत सारी अचीवमेंट कर ली है। अभी तो कुछ महीने, 4-5 महीने बाकी है, फिर भी आपने बहुत सारी अपनी जो योजनाएं थी उनको पूरा कर लिया है और आपने उनको पूरा फुलफिल कर लिया है। ये आप पूरी तरह से समझते हो, जानते हो और आप आगे भी बढ़ रहे हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि आप अपने वक्त को, अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो और उसको बढ़िया तरीके से अपने वक्त को आप आगे आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये जिंदगी में सबसे आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो लॉन्ग वीकेंड है, प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड सभी शहरों में बहुत सारी इवेंट्स हो रही है सिविक हॉलीडे की। फायरवर्क्स तो होगा ही होगा ना, ये तो आपको मालूम ही है कि फायरवर्क्स होने वाला है। तो आप जहाँ भी जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और ज़िंदगी का लुत्फ उठाइएगा। जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जैसे भी आपका मन चाहे, तो उसी तरीके से आप एंजॉय कीजिएगा अपना वक्त जो है ना। अगर आप अपनी मर्जी से जीते हो, अपने टर्म्स में जीते हो, उसका जो जीने का मज़ा है ना, वो अलग ही है। और उसमें आपको ये महसूस हो जाता है कि आपने टाइम की वैल्यू की, दूसरों के टाइम की वैल्यू की और आप ज़िंदगी को एक बढ़िया तरीके से जिए हो, एक प्रैक्टिकल तरीके से जिए हो और आगे बढ़ने के लिए जिए हो और दूसरों को भी अपने साथ आगे लेके चले हो। दूसरों को साथ लेके आगे चलता है कोई कोई, अपने लिए तो सब भागते हैं। जो दूसरों को साथ लेके चलता है उसको उसकी अपना ही अलग ही, उनको ही मालूम है जो ऐसा करते हैं और उनको ही मालूम है कि उसका क्या मज़ा है। तो आइए इन्हीं विचारों को साथ लेकर के हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो और आपको बढ़िया टीवी चाहिए, बढ़िया लेटेस्ट गैजेट चाहिए किचन के लिए, तो आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए, आउटडोर आपको आपके लिए बारबेक्यू चाहिए, तो ये सारा ही सामान आपको कहाँ पर मिलता है? जी हाँ, आपको ये सारा सामान आपको मिलता है, जी हाँ। तो ये जो जगह है आपके लिए, ये है आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है और दूसरी लोकेशन उनकी ग्वालियर में है। और उनकी स्पेशल देखने के लिए अभी राखी आने वाली है हमारी बहनों के लिए, तो अगर आपने किसी तरह की भी राखी की, किसी तरह की भी आपको सामान लेना है तो पूजा हट में, तो अब टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर आप अपनी बहन को टीवी लेके देना चाहते हो, गिफ्ट लेके देना चाहते हो, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, फिर आप कॉल कर सकते हैं अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045-799-0045 पे आप उनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक को कॉल कर सकते हो। अब जब आपने घर लेना है तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खेंड को 519-500-46-1260 किचनर वाटरलू गॉल्फ में। अगर आपने कोई घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खेंड को। जी हाँ, नसीब खेंड आपको
बहुत बढ़िया डील लेके देंगे। और जानकारी के लिए 519-546-1260 आप कॉल करो। अब आपने घर ले लिया, आपको मूव तो होना ही है, तो एचके मूवर्स आपकी पूरे कनाडा भर में मदद करने की कोशिश मदद करते हैं, कनाडा भर में आपको मूव होने के लिए मदद करते हैं। तो ये है आपके लिए एचके मूवर्स। एचके मूवर्स की बहुत सारी टीम्स हैं आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं, तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लो। तो आप 416-524-8004 पर आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हो। अगर आपने फूड ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है और न्यूली रेनोवेटेड है, आप उनको कॉल कीजिएगा 905-814-1703। ये है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, आपके लिए मौजूद है मिसिसागा में ब्रिटानिया एंड क्रेडिट व्यू पे। तो अब आपके लिए गाना तो एक बढ़िया सा बनता ही है ना, तो जरूर गाना सुनाएंगे। पर आपको बता दें कि अगर आपने आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको क्लीनिंग का काम करवाना है, तो आपके लिए मास्टर क्लीनर डिपो लंदन में मौजूद है गोर रोड पे, तो आप उनको कॉल कीजिएगा और जानकारी के लिए, और क्लीनिंग का काम बहुत बढ़िया करके देंगे। तो ये है आपके लिए मास्टर क्लीनर डिपो। तो आप masterclusiondepot.com पर जाकर उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हो। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं लता जी का। लता जी तो हमेशा के लिए फॉर एवर है, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल लता जी सॉन्ग। पंजाबी के गाने भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं, आपको उनका पंजाबी का गीत भी जरूर तो वो भी आपको जरूर सुनाएंगे, पर पहले आपको ये बहुत ही रोमांटिक सा गाना

जी, आप सुन रहे हो प्रोग्राम इंफॉर्मेंटल है, पर आई जस्ट वांट टू हैव थोड़ा सा आवाज होनी चाहिए, तो आइए आपको ये रोमांटिक सा गीत सुनाती हूँ। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अभी आप वीकेंड में कोई इंटरेस्टिंग चीज आप कर रहे हो बताना, जिनके बर्थडेज हैं, बहुत शादियां बहुत होती हैं इस वीकेंड में, तो अगर आपके शादी हो रही है तो आपको बहुत बहुत बधाई।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है झारखंड सर में। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा 16 घंटा, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा शर्मा। तो चलो अभी आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ, मेरे सामने आ गया तो मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो ये जो एक दूसरे का होने की बात होती है, इसी में बस गाने में यही बताया गया है, बड़ा रोमांटिक सा है। वीकेंड है, लॉन्ग वीकेंड है तो सुनते हैं अच्छे अच्छे गाने।

या एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट मीरा शर्मा। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, लोटस टीवी आपको चाहिए, या फिर आपको आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, किचन गैजेट्स चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी राखी स्पेशल देख सकते हो। फिर आपने अगर ऑर्डर बुक करना हो तो आप 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने मूव होना है तो आपके लिए मूविंग की पूरी सेवाएं आपको एचके मूवर्स देते हैं कनाडा भर में। तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-4164-6704 पे आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में मौजूद है अब, और बहुत सालों का उनका तजर्बा है। आपका कोलिजन आपकी कार वैन ट्रक को नए जैसा बना देंगे। आप मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको मूविंग करनी है तो आप एचके मूवर 416-524-4704 पर कॉल कर सकते हो। और लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ चाहिए तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइएगा आपको। और राखियाँ लेनी है आपको इंडिया सजावटन पूजा हाट पे जाइएगा। तो लीजिए, सुनिए, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: आत्मा की आवाज के बारे में जब बात की जाए तो हम लोग ज्यादातर अपनी आत्मा की आवाज को सुनते नहीं। अगर हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दें तो शायद हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्योंकि वो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज होती है, वही अंदर जो आपके भगवान बैठा है उसी की आवाज होती है वो। तो अगर तो आप अपने आप को जानते हो, समझते हो, तो फिर आप दुनिया को भी जान सकते हो, समझ सकते हो। तो ये बड़ी गहरी बात है, आप समझने की कोशिश करना कि अगर आप खुद को समझ लो, खुद को जान लो, सेल्फ इल्यूमिनेशन, तो उसमें बहुत ही मज़ा है। आप ट्राई करके देखिए, कोशिश करके देखिए। तो आइए, इस गीत के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने श्रद्धा पला है, वंडरफुल डे। और रात को हम आपकी सेवा में 10 से 11 बजे शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया गीत सुनाएंगे, मनोरंजन करेंगे, आपसे बातें करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। तो मैंने एक पोइम लिखनी शुरू की है, तो अभी मैंने पहली 2 लाइनें लिखी हैं, तो आपको ये साथ शेयर कर लेती हूँ। बाकी पोइम अभी मुझे लिखनी है, मैं पोइम लिखती हूँ। तो मैंने जो पहली 2 लाइनें लिखी हैं कि आई लाइक टू डांस व्हेन आई गेट ए चांस, आई डांस विद वूल्स, लायंस, lionesses and of course pigs. Yes, pigs. I dance with pigs.
1: अपने परिवार की रक्षा करो, सिर्फ लाइसेंस इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्टर ही वरतो, यकीनी बनाओ की ESA परमिट हासिल करन। होर जानन लई hirelicense.ca ते जाओ। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी अथॉरिटी वालों एक सुनेहा।
2: This is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca.

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियोस को देखने के लिए आपके अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स में

0: रहा हो, सदा आनंद कर हो मेरे प्यारे, हर गोविंद गुरु राखिया, वड्डी वड्याई नानक करती साच बद सत पाखिया। सूरत महला वे कृपा स्वामी मेरे तित सच है दरबार सतगुरता।
1: सनग्लासेस, सेफ्टी ग्लासेस, तो विजिट कीजिए अल्फा ऑप्टिकल जिंकोजी एंड विलियम्स पार्कवे में मौजूद गोल्डन गेट प्लाजा में ब्रैम्पटन में। अल्फा ऑप्टिकल, एनी एज एनी स्टेज। जी हाँ, उनकी स्पेशल्स देखने के लिए अल्फा ऑप्टिकल .ca पे जाइए। आंखों को चेक करवाने के लिए अपॉइंटमेंट के लिए 905-400-5993 पर कॉल कीजिए 9054562733। अल्फा ऑप्टिकल, योर विजन इज योर बिजनेस।
0: करण कारण समरथ सो पाई, सच्चे सच्ची सोए, नानक प्रभु ध्याई है, पाई मन तन शीतल होए। सूरत महला पंजवा, संत हो हर हर नाम ध्याई, सुख सागर प्रभु विसरो नाही, मन चिंदियड़ा फल पाई रहाओ, सतगुर पूरा नाम गवाया, अपनी कृपा धारी, पात्र हम प्रभु भय दयाला, दुख मिटया सब परवारी,

0: रहा हूं। ताप गया प्रभ आप मिटाया, जन की लाज रखाई, साथ संगत दे सब पल पाए, सतगुर के बल जाई। हलत पलत कब रोवे सवारे, हमरा गुण अब गुण ना बिचारिया।
1: गल कर लगे दिल कर रहे हैं, ताही तो सिद्ध करन लगे हैं, जरा सुन के सोने।

ने ताप छोड़ गया परवान, गुरपुर हैरानी सन सच्चे की ताकी, परमेश्वर आप हुआ रखवाला, सांस सहज सुख किन महे उपजे, मन हुआ सदा सुखाला रहाओ। हर हर नाम दियो दास तिन सगला रोग जिदारो, अपनी कृपा तारी तिन सगली बात सवारी, प्रभ अपना बिरद समारिया, हमरा गुण अवगुण न बिचारिया, गुर का सबद भयो साथी तिन सगली लाज राखी, बोलाया बोली तेरा तू साहेब मुनि गहरा।

कुने पई गुन गाए दुर्द गया हर नाम ते आए रहा सबनी थाई रव्या आद जुगाद जाता वड परता गुर प्रसाद न होए संताप गुर के चरण लगे मन मीठे निर्विघ्न होए सब थाई बूठे सब सुख पाए सतगुर टूटे पा

पाठं गणेश स्तोत्रम्। नारद उवाच प्रणम्य शिरसा देवं गौरीपुत्रं विनायकं भक्तावासं स्मरेन्नित्यं आ

नारायण ऋषि अनंतम छंद श्री महाकाली महालक्ष्मी देवता श्री दुर्गा प्रीत्यर्थम सप्त श्लोक।

आप सभी श्रोताओं का घर संसार में बहुत ही प्यार का स्वागत है, अभिनंदन है। नमस्कार, और आपके लिए बहुत ही प्यारा सा मौसम है, लॉन्ग वीकेंड है। अभी आप जानते हो कि आपके लिए अभी अगस्त का महीना गया है, तो अभी साल ऐसे हाथ से कैसे सरकता जा रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपने तो बहुत सारी अचीवमेंट कर ली है। अभी तो कुछ महीने, 4-5 महीने बाकी है, फिर भी आपने बहुत सारी अपनी जो योजनाएं थी उनको पूरा कर लिया है और आपने उनको पूरा फुलफिल कर लिया है। ये आप पूरी तरह से समझते हो, जानते हो और आप आगे भी बढ़ रहे हो, जो कि एक बहुत ही बढ़िया चीज है कि आप अपने वक्त को, अपने टाइम को अच्छे से इस्तेमाल कर रहे हो और उसको बढ़िया तरीके से अपने वक्त को आप आगे आगे बढ़ने के लिए इस्तेमाल कर रहे हो। ये जिंदगी में सबसे आपके लिए बहुत बड़ी बात है। तो लॉन्ग वीकेंड है, प्लीज डू नॉट ड्रिंक एंड ड्राइव। एंड सभी शहरों में बहुत सारी इवेंट्स हो रही है सिविक हॉलीडे की। फायरवर्क्स तो होगा ही होगा ना, ये तो आपको मालूम ही है कि फायरवर्क्स होने वाला है। तो आप जहाँ भी जा रहे हो अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवारों के साथ, तो आप बहुत अच्छे से एंजॉय कीजिएगा और जिंदगी का लुत्फ उठाइएगा। जैसे भी आपको अच्छा लगता है, जैसे भी आपका मन चाहे, तो उसी तरीके से आप तो इंजॉय कीजिएगा अपना वक्त जो है ना। अगर आप अपनी मर्जी से जीते हो, अपने टर्म्स से जीते हो, उसका जो जीने का मजा है ना, वो अलग ही है। और उसमें आपको ये महसूस हो जाता है कि आपने टाइम की वैल्यू की, दूसरों के टाइम की वैल्यू की और आप जिंदगी को एक बढ़िया तरीके से जिए हो, एक प्रैक्टिकल तरीके से जिए हो और आगे बढ़ने के लिए जिए हो और दूसरों को भी अपने साथ आगे लेके चले हो। दूसरों को साथ लेके आगे चलता है कोई कोई, अपने लिए तो सब भागते हैं। जो दूसरों को साथ लेके चलता है उसको उसको उसकी अपना ही अलग ही, उनको ही मालूम है जो ऐसा करते हैं और उनको ही मालूम है कि उसका क्या मजा है। तो आइए इन्हीं विचारों को साथ लेकर के हम आगे बढ़ते हैं प्रोग्राम में। अगर आप अपने घर में फ्रिज, स्टोव, वाशर, ड्रायर बढ़िया क्वालिटी का लेके आना चाहते हो और आपको बढ़िया टीवी चाहिए, बढ़िया लेटेस्ट गैजेट चाहिए किचन के

है तो आपको आउटडोर फर्नीचर चाहिए और दूर आपको आपके लिए बारबेक्यू चाहिए, तो ये सारा ही सामान आपको कहाँ पे मिलता है? जी हाँ, आपको ये सारा सामान आपको मिलता है। जी हाँ, तो ये जो जगह है आपके लिए, ये है आपके लिए टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, और दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल पे है। और उनकी स्पेशल देखने के लिए अभी राखी आने वाली है हमारी बहनों के लिए, तो अगर आपने किसी तरह की भी राखी की किसी तरह की भी आपको सामान लेना है तो पूजा हट में, तो अब टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे अगर आप अपनी बहन को टीवी लेके देना चाहते हो, गिफ्ट लेके देना चाहते हो, तो आप जाइएगा टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स पे। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पे मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी ग्वाल्फ में है। तो और जानकारी के लिए आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स डॉट कॉम पर जाइए, और फिर आप कॉल कर सकते हैं अपने ऑर्डर बुक करने के लिए 905-799-0045, 7997-9-0045 पे आप उनको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक पर कॉल कर सकते हो। अब जब आपने घर लेना है तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खेड को, 519-500-46-1260 किचनर वाटरलू ब्लॉक में। अगर आपने कोई घर खरीदना है, प्रॉपर्टी खरीदनी है, इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप जाइएगा, आप कॉल कीजिएगा नसीब खेड को। जी हाँ, नसीब खेड आपको बहुत बढ़िया डील लेके देंगे। और जानकारी के लिए 519-500-46-1260 आप कॉल करो। अब आपने घर ले लिया, आपको मूव तो होना ही है, तो एचके मूवर्स आपकी पूरे कनाडा भर में मदद करते हैं, कनाडा भर में आपको मूव होने के लिए मदद करते हैं। तो ये है आपके लिए एचके मूवर्स। एचके मूवर्स की बहुत सारी टीम्स हैं, आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। तो आज ही अपना ट्रक बुक कर लो, तो आप 416-524-604 पर आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हो। अगर आपने फूड ऑर्डर करना है, लाइव कुकिंग करवानी है, तो आप न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट ब्रिटानिया क्रेडिट व्यू पे मौजूद है और न्यूली रेनोवेटेड है, आप उनको कॉल कीजिएगा 905-814-1703। ये है आपके लिए न्यू इंडिया स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट, आपके लिए मौजूद है मिसिसागा में, ब्रिटानिया एंड क्रेडिट व्यू पे। तो अब आपके लिए गाना तो एक बढ़िया सा बनता ही है ना, तो जरूर गाना सुनाएंगे। पर आपको बता दें कि अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपको कुलिजन का काम करवाना है, तो आपके लिए मास्टर कुलिजन डिपो लंदन में मौजूद है गोर रोड पे, तो आप उनको कॉल कीजिएगा और जानकारी के लिए, और कुलिजन का काम बहुत बढ़िया करके देंगे। तो ये है आपके लिए मास्टर कुलिजन डिपो, तो आप मास्टर कुलिजन डिपो डॉट कॉम पर जाकर उनके बारे में और जानकारियाँ ले सकते हो। तो आइए अब आपको एक बढ़िया सा गीत सुनाते हैं लता जी का। लता जी तो हमेशा के लिए फॉर एवर है, तो लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल लता जी सॉन्ग। पंजाबी के गाने भी उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे गाए हैं, आपको उनका पंजाबी का गीत भी जरूर तो वो भी आपको जरूर सुनाएंगे, पर पहले आपको ये बहुत ही रोमांटिक सा गाना।

हाँ जी, आप सुन रहे हो प्रोग्राम इंस्ट्रूमेंटल है, पर आई जस्ट वांट टू हैव थोड़ा सा आवाज होनी चाहिए, तो आइए आपको ये रोमांटिक सा गीत सुनाती हूँ। लेट्स गो टू दिस ब्यूटीफुल सॉन्ग। अभी आप वीकेंड में कोई इंटरेस्टिंग चीज आप कर रहे हो बताना, जिनके बर्थडेज हैं, बहुत शादियां बहुत होती हैं इस वीकेंड में, तो अगर आपके शादी हो रही है तो आपको बहुत बहुत बधाई।

जी हाँ, तो एक बार फिर से आपका स्वागत है धरती पर। उम्मीद रखती हूँ कि आपको प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा पूरा घंटा, और मैं हूँ आपकी होस्ट मीरा शर्मा। तो चलो अभी आपको एक और बढ़िया सा गीत सुनाती हूँ, मेरे सामने आ गया तो मैंने सोचा कि आपके साथ जरूर शेयर करना चाहिए। तो ये जो एक दूसरे का होने की बात होती है, इसी में बस गाने में यही बताया गया है, बड़ा रोमांटिक सा है। यस यस

या एक बार फिर से आपका स्वागत है घर संसार में, और मैं हूँ आपकी दोस्त और होस्ट मीरा शर्मा। तो अब अगर आपने किसी किस्म का भी फ्रिज, स्टोव, वॉशर, ड्रायर, लोटस टीवी आपको चाहिए, या फिर आपको आउटडोर फर्नीचर, बारबेक्यू चाहिए, किचन गैजेट्स चाहिए, तो ये सारा सामान आपको टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स में मिलता है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स आपके लिए इंटर मॉडल एंड एयरपोर्ट रोड पर मौजूद है, दूसरी लोकेशन उनकी गोल्फ में है। टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स .com पर जाकर आप उनकी राखी स्पेशल देख सकते हो। फिर आपने अगर ऑर्डर बुक करना हो तो आप 905-799-0045 पर कॉल कीजिए, 905-799-0045 पे आप टॉप चॉइस इलेक्ट्रॉनिक्स वालों को कॉल कर सकते हो। तो अब अगर आपने मूव होना है तो आपके लिए मूविंग की पूरी सेवाएं आपको एचके मूवर्स देते हैं कनाडा भर में। तो उनकी बहुत सारी टीम्स हैं आपके सामान को हिफाजत से पहुंचाते हैं। आज ही अपना ट्रक बुक कर लीजिए 416-524-7004 416-524-6704 पे आप एचके मूवर्स को कॉल कर सकते हैं। अगर आप लंदन आसपास के इलाके में रहते हैं, आपके लिए बड़ी खुशी की खबर है कि आपके लिए मास्टर कोलिजन डिपो लंदन में मौजूद है अब, और बहुत सालों का उनका तजर्बा है। आपका कोलिजन आपकी कार वैन ट्रक को नए जैसा बना देंगे। आप मास्टर कोलिजन डिपो .com पर जाकर उनके बारे में और जानकारी ले लीजिए। अब अगर आपने किसी किस्म का भी आपको मूविंग करनी है तो आप एचके मूवर 416-524-7004 पर कॉल कर सकते हो। और लड्डू, जलेबियाँ, समोसे, मिठाइयाँ चाहिए तो समोसा एंड स्वीट फैक्ट्री पे जाइएगा आपको। और राखियाँ लेनी है आपको इंडिया सजावटन पूजा हाट पे जाइएगा। बोलिए, सुनिए, ये बहुत ही प्यारा सा गीत।

0: आत्मा की आवाज के बारे में जब बात की जाए तो हम लोग ज्यादातर अपनी आत्मा की आवाज को सुनते नहीं। अगर हम अपनी आत्मा की आवाज को सुनना शुरू कर दें तो शायद हमारी जिंदगी बेहतर हो सकती है, क्योंकि वो आपकी अंतरात्मा की जो आवाज होती है, वही अंदर जो आपके भगवान बैठा है उसी की आवाज होती है वो। तो अगर तो आप अपने आप को जानते हो, समझते हो, तो फिर आप दुनिया को भी जान सकते हो, समझ सकते हो। तो ये बड़ी गहरी बात है, आप समझने की कोशिश करना कि अगर आप खुद को समझ लो, खुद को जान लो, सेल्फ इल्यूमिनेशन, तो उसमें बहुत ही मज़ा है। आप ट्राई करके देखिए, कोशिश करके देखिए। तो आइए, इस गीत के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। नानक नाम चढ़ती कला, तेरे पाने स्वादा पला है, वंडरफुल डे। और रात को हम आपकी सेवा में 10 से 11 बजे शुरू हो जाएंगे और आपको बहुत बढ़िया बढ़िया गीत सुनाएंगे, मनोरंजन करेंगे, आपसे बातें करेंगे, बहुत प्यारी प्यारी सी बातें करेंगे। तो मैंने एक पोइम लिखनी शुरू की है, तो अभी मैंने पहली 2 लाइनें लिखी हैं, तो आपको ये साथ शेयर कर लेती हूँ। बाकी पोइम अभी मुझे लिखनी है, मैं पोइम लिखती हूँ। तो मैंने जो पहली 2 लाइनें लिखी हैं कि आई लाइक टू डांस व्हेन आई गेट ए चांस, आई डांस विद वूल्स, लायंस, lionesses and of course pigs. Yes, pigs. I dance with pigs. And
1: this is AM 530, CHLO AM, serving Brampton, Mississauga, Toronto, the GTA, and the world at am530.ca. The opinions expressed in the following program are those of the host and their guests and do not reflect the views and opinions of the management and staff of CHLO AM 530.

करने से पहले इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही न्यू वीडियो को देखने के लिए आपके अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबा दें। और अपकमिंग वीडियोस के टॉपिक के लिए कमेंट बॉक्स

0: राजधानी स्वीट्स, ये सचमुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए।
1: ये है राजधानी, राजधानी, राजधानी।
0: Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
2: Garnishment, power of sale notice, bank walo paise di mang, unhe hi sanu call karo. Phir to anu koi nahi kar sakega tang. Karza maaf karao. 100% mansik shanti pao. Collection callan to chutkara. Bina vyaj nikiya nikiya kishta. Call karo Canada Consumer Credit Assistance 416-502-3100। कर्जे तो परेशान, असी करांगे काम आसान। 416-502-3100।
3: इमेजिन करो कि तुसी एक घर खरीदना चाहते हो, सोना जिया, क्यूट जिया घर, वधिया लोकेशन एंड इन बजट। यू देन कॉल योर फ्रेंड्स, देन दे कॉल देयर फ्रेंड्स एंड दे कॉल यू बैक सेइंग लब दांगे वरी ना कर। तुसी थोड़ा जा वरी कर दियो, समझ नहीं आ रहा हुंदा की करिए किवें करिए। देन सडनली तुसी ए कमर्शियल सुन दे।
4: दिस इज हरजिंदर गिल फ्रॉम रीमैक्स गोल्ड रियल्टी। यू गॉट इट राइट, जस्ट कॉल हिम एंड यू आर सॉर्टेड। लोकेशन, प्रॉपर्टी, बजट, मार्केट सर्च, एवरीथिंग। हरजिंदर गिल ते छड़ दवो, तुसी बस मठियाई दा डब्बा तैयार करो। हरजिंदर गिल 647-400-6862 और विजिट teamharjindergill.com, हेल्पिंग यू टू फुलफिल योर रियल एस्टेट प्लान्स।
5: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 647-400-6862। जी मीडिया ग्रुप।

0: राजधानी स्वीट्स, ये सच मुच है स्वाद की राजधानी। खुद आइए, दोस्तों को भी लाइए। Rajdhani Sweets and Restaurant, the largest Indian vegetarian restaurant chain in Canada. Find out more at rajdhanisweets.ca.
1: इश्तिहार है तो व्यापार है, अपना बिजनेस प्रमोट करने लिए संपर्क करो 6974008812 6474006862 जी मीडिया ग्रुप।
2: नजरिया प्रोग्राम नाल जुड़ चुके दोस्तों का हार्दिक ते निघा स्वागत। उम्मीद करदा कि ठीक ठाक होवोगे जी। जिहड़े दोस्त साढ़े नाल हुणे जुड़े ने उन्हां नूं निघी जी आखदे आ, क्योंकि अपना साथ 12 बजे रामस पंजाबी वीकेंड शो दे नाल हर एतवार वाले दिन बन जांदा है। 12 तों 1 रामस पंजाबी ते 1 तों 2 सुणदे हो प्रोग्राम नजरिया। मैं थोड़ा होस्ट मनजीत सिंह गिल। कोई भी गलबात तुसीं प्रोग्राम दे दौरान स्टूडियो च करनी होवे ते 416-233-7768 जां 8297 ते कीती जा सकदी हुंदी है। 416-233-7368 जां फिर 8297 स्टूडियो दे टैलीफोन नंबरस ने। कोई जानकारी, कोई इनफॉर्मेशन, कोई गलबात तुसीं करनी होवे ते इन्हां नंबरस नूं डायल करके कह सकदे हुंदे हो। जे 2 बजे तो बाद कोई भी गलबात करनी है प्रोग्राम के संबंध में, या फिर रियल स्टेट संबंधी कोई जानकारी थोड़ा चाहिए हो, फिर साढ़े 416-669-1379 से संपर्क किया जा सकता है। 416-669-1379 मेरा पर्सनल टैलीफोन नंबर है। और अज मौसम जिहड़ा काफ़ी स्लिपरी है जी, मीह काफ़ी पै रहा है। आई बिलीव कि हुण भी पै रहा होना, क्योंकि मैं 12 बजे तो पहला की गल कर रहा कि उदों भारी मीह पै रहा सी बाहर। सो केयरफुली तुसीं ड्राइव करना अगर ड्राइव कर रहे हो अज तां, ते जेकर नहीं जाण दी किते बहुती जरूरत, क्योंकि जे अज छुट्टी वाला दिन है, लेकिन मेरा ख्याल है कि किते भी दूर दराडे अज जाण दा कोई मौसम इस तरह का नहीं है कि फेवरेबल नहीं है। ड्राइविंग कंडीशन जिहड़ियां उह काफ़ी स्लिपरी ने, सो अवॉयड ही करो जे नहीं किते जाण दी जरूरत। ते डेफिनेटली तुसीं आराम दे नाल अपने बच्चों दे नाल अपने परिवारां दे नाल अज दा दिन है उसनों बता सकते हो, क्योंकि बच्चों दी भी ये छुट्टियां दा आखिरी महीना है। सो जरूर तुसीं उहनां दे नाल जिहड़ा टाइम है वह घर बैठ के भी मेरा ख्याल एक बड़ा वैल्यूएबल टाइम जिहड़ा तुसीं स्पेंड कर सकते होंगे हो, उहनां दे नाल बैठ के कोई ना कोई तुसीं अपना कोई मूवी वगैरह जां वैसे ही कोई होर कोई गेम, अजकल तो बहुत डिजिटल गेम्स भी बड़िया ने, ते तुसीं वैसे भी कोई गेम प्ले करनी घर बैठ के बच्चों के नाल, तो वह की जा सकती है। और मौसम का भी जिहड़ा लुत्फ है यहो जे मौसम का भी वह भी लिया जा सकता हुंदा है। तो जे जरूरी जाना ही पैना तो फिर डेफिनेटली जी वो तो रुकया नहीं जा सकता, तो जरूर तुसीं केयरफुली ड्राइव करते हुए अपनी मंजिल तक जिहड़ा वो पहुँचो। साडी दिली अरदास है तुसीं चढ़दी कला दे विच रहो। और लौंग वीकेंड है, लौंग वीकेंड दी एक बारी फिर तो तुहानूं शुभ शामां जी। साडे प्रोग्राम दे वलों, साडे परिवारां दे वलों, साडे स्पॉन्सर्स दे वलों तुहानूं शुभ शामां ने इस लौंग वीकेंड दीआं। जरूर तुसीं इस नूं इंजॉय करो, और जो रहिंदा हफ्ता तुहाडा वो इस तों भी पिछले हफ्ते तो भी कितें वधिया होवे, ये असीं हमेशा ही अरदास करदे हां। साडी गल्लबात दा हिस्सा तुहाडे तक पहुँचाउण दे विच सानूं मदद पंजाबी वन नेचर दे वलों मिलदी है। 416-937-2061 उन्हों का टैलीफोन नंबर है। ऑप्टिकल 1-905-455-0752 संपर्क किया जा सकता है। तो ट्राई सिटी प्रोफेसनल रियल्टी ब्रोकरेज तो अवतार सिंह जी बडियाल हमेशा सपोर्ट करते हैं। 416-464-2067 गलबात कर सकते हो। 416-464-2067 अवतार सिंह जी बडियाल होर टैलीफोन नंबर है। किंग टोइंग 416-677-2222 संपर्क किया जा सकता है। अजिहे मौसम दे विच खास करके अगर किते जरूरत अपनी कार जां ट्रक नूं टो करवाउण दी पैंदी है, तो पूरे नॉर्थ अमेरिका दे विच सेवावां दिंदे ने किंग टोइंग वाले। 416-677-2222 उन्हां दा टैलीफोन नंबर है। 416-677-2222 ते संपर्क किया जा सकता है। कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल 905-678-1200 ते संपर्क करके तुसीं जानकारी लै सकते हो। एयर टिकट बुकिंग तुसीं दुनिया भर दे विच किते भी जाण लई करनी है, ते फिर 905-678-1200 कटारिया टूर्स एंड ट्रैवल वालिआं दा टैलीफोन नंबर है। ਡਰੀਮ ਹੋਮ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ 905-805-3000 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗਿੱਲ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ 6 ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4 ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਜੀ ਟੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਅਤੇ 2 ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕੈਲਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 905-799-2616 ਟੈਲੀਫੋਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਗਿੱਲ ਸਵੀਟ ਫੈਕਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ, 9057992616 'ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਂ ਮਕੈਨੀਕਲ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਾਰ ਸੇਲਸ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢਾਡਾ ਜੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ। 21-39 ਮਿਲਵਿਕ ਡਰਾਈਵ ਨੌਰਥ ਯੋਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕੇਟਡ ਨੇ, 21-39 ਮਿਲਵਿਕ ਡਰਾਈਵ ਨੌਰਥ ਯੋਰਕ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਕਸ ਐਂਡ ਮਾਡਲਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਮਿਸ਼ਨ ਟੈਸਟ ਰਿਪੇਅਰ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਆਟੋਮੋਟਿਵ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਜਨ ਟਿਊਨਅਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰਾਂਸਮਿਸ਼ਨ ਟਿਊਨਅਪ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਜੈਲੋ ਸਟਿੱਕਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਊ ਬੈਂਡਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਫਿਊਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ, ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਸਰਟੀਫਾਈਡ ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਲਈ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਲਈ ਹੀਟਿੰਗ ਐਂਡ ਕੂਲਿੰਗ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਨੰਬਰ 416-747-6800 ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਆਟੋ ਰਿਪੇਅਰਸ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ ਕਾਰ ਸੇਲਸ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਢੱਡਾ ਜੀ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਧੇਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਜੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਜ਼ਰੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋਸਟ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅਤੇ 416-669-1379 'ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੋ।

0: हाँ हरमन कौरी
1: हाँ
0: दस फिर
1: मैं देख तेरी इस गल ना सीरियसली हो लग गई हां
0: हाँ
1: तू एवं कर जेडे प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर्स नहीं होंदे
0: प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजर
1: हां ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਊਗੀ ਸਮਰ ਕੈਂਪ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਤੂੰ ਬਣ ਜਾ
0: मतलब ये है कि भी आपके बच्चे को जब समर कैंप पे जाना है तो क्या का चीज चाहिए है
1: हाँ।
0: फार्मस चाहिए है बैग चाहिए
1: हाँ।
0: दस्ताने चाहिए कोटी ऐसे मेरी गल सुनो
1: हाँ।
0: ये काम मैं करूंगा तो मतलब बच्चे की माँ की करूंगी फिर
1: भाई साहब जब बच्चे की माँ नहीं करना तो उन्हें तेनू की करने रखना है
0: यार किद्दां दी मां होगी जेड़ा अपने बच्चे दा चा नहीं करन दी ते ओ मेरे का ऑर्गेनाइजर लभदी फिरूगी उत्थे
1: हेलो
0: नाले
1: एक मिनट हेलो
0: एक्सक्यूज मी
1: हां
0: जेड़ा ओदा मेन ऑर्गेनाइजर ओ किधर गया
1: केड़ा
0: जेने बच्चा ऑर्गेनाइज कीता पहले
1: एक्सक्यूज मी
0: पापा जी
1: थोड़ा ध्यान ना हो
0: वही मैं कह रहा ना
1: पापा जी कितना का काम करदे हुंदे ने दसी जरा मेनू
0: नहीं भावे कुछ भी दे दा
1: ये थोड़ा लेडीज ऑलवेज बच्चे भी देखण काम भी देखण घर भी देखण डॉलर भी देखण सारा कुछ देखण हेलो
0: मैडम तू ना बीबी दी साइड ना जा मेरे वाले प्रोफेशन ते आ भी ए को प्रोफेशनल प्रोफेशन मनु चंगा लगा नहीं
1: हेलो
0: नाले मुक दी गल है भी जे अगले मेरे को ये काम करावणगे कल नु भाई साहब मेरी कुछ चीज अगले दा जवाक पाड़ दे बाद अगले पैसे ना देण फिर कौन जिम्मेवार
1: एक्चुअली तेरा सिर जरूर पाड़ सकदा बाकी गल्लां दी गल्ला
2: ए मेरे रब जी मेरा बिजनेस नहीं जे चलता बाबा जी बड़े पापड़ मेल मेल देख ले ने कोई गल नहीं बनदी बाबा जी प्रसाद चढ़ाऊंगा $50 ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਚੜਾਉਂਗਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾ ਦਿਓ
3: ਓਏ ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਡਿਸਟਰਬ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੇਵ ਤਾਤਲੇ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀ ਐਡ ਚਲਾ ਬਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੈਕੇਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਕਰ 416-677-0609 416-677-0609

0: Ladies and gentlemen, introducing from CHLO AM 530, the number one radio host in the world, Dave Tatla!
1: वेलकम टू डेव टाटला शो। आज के प्रोग्राम में बहनों और भाइयों आप सबका स्वागत है। आशावादी उम्मीद करते हैं तुहाडा अज दा दिन अच्छा गुजरिया होगा। साडी कोशिश रहेगी कि तुहाडे अगले एक घंटे विच तुहाडे पैसे की बचत की जाए, चाहे वह ब्रैम्पटन टीवी अपलायंसिस हो या फिर ग्रैंड फर्नीचर हो। इस वीकेंड ते लोंग वीकेंड है, बहुत वधिया वधिया प्राइज तुहानूं मिल रही ने, उन्हां दा फायदा जरूर चको। साडे नाल सुल्तान जी स्टूडियो विच जुड़ चुके ने। सुल्तान जी पुराने स्वागत है, की हाल है?
2: थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया।
1: सुल्तान जी वधिया वीकेंड है, वधिया दिन लग रहे हुए ने ते वधिया वधिया प्राइज भी देनिया ने। आपां टेलीविजन आले पासे शुरू करदे आ।
2: मेन चीज ए है जी के ए है ब्लैक फ्राइडे इन जुलाई।
1: हां जी,
2: ए वेरी स्पेशल इवेंट हुंदा। एदे च जीई फ्रिजडेयर, फ्रिजडेयर गैलरी एंड प्रोफेशनल दे नाल नाल बॉश जर्मन ब्रांड है, सोनी एंड सैमसंग पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ते क्योंकि 31 तरीक नूं एक जुलाई मंथ खत्म हो गया, अज 1 अगस्त है, पर लोंग वीकेंड होण करके जेड़े कस्टमर इस टाइम एदा एडवांटेज लेना चाहुंदे उन्हां वास्ते ए बेस्ट डील है, लास्ट कॉल है के ब्लैक फ्राइडे बॉक्सिंग वीक प्राइसिस इन जुलाई तुहानू मिलनगियां। जदों तुसी टीवी सैक्शन दी गल कीती है ते देखो तुसी अज तक ना सुनिया होना।
1: हां जी,
2: ना मैं भी अज तक वेचिया, ना कस्टमर ने लाए होने आ।
1: हां जी,
2: 50 इंच टीवी 299,
1: 50 इंच टेलीविजन सिर्फ ते सिर्फ 299,
2: 55 इंच टीवी 399
1: दा 55 इंच टीवी,
2: 65 इंच टीवी
1: 5.99
2: पे करोगे, फ्री डिलीवरी मिल जानी है, 1 साल दी पार्ट्स एंड लेबर वारंटी है, 4K UHD अल्ट्रा हाई डेफिनेशन स्मार्ट टीवी है, गूगल फीचर्स दे नाल, एदे च तुहानू ऐप स्टोर मिलेगा, अनलिमिटेड ऐप्स तुसी डाउनलोड कर सकदे हो। एदे लई पहुंचना है तुसी brampton appliances.com साडी वैबसाइट सर्च करनी है, जां तुसी 801 बोवेड ड्राइव वेस्ट जस्ट ईस्ट ऑफ चंकूजी ऑन बोवेड ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस ते पहुंचना है, या फिर तुसी टिकटॉक ते ब्रैम्पटन टीवी ऐप, ब्रैम्पटन टीवी APP, ब्रैम्पटन टीवी ऐप सानू फॉलो करना है ते उत्थे देखना है कि अज कैसियां स्पेशल प्रमोशन जेड़ियां ओ दित्तियां जा रही हैं। ब्लैक फ्राइडे प्राइसिस इन जुलाई ब्रैम्पटन टीवी एंड अपलायंसिस ते 905-450-2828। ते ए ना सोचियो कि इर्च तां 85 इंच बोलिया ही नहीं, इर्च तां 98 इंच बोलिया ही नहीं, 85 इंच ते भी $700 दी सेविंग है।
1: बोले
2: जे सोनी ब्रेविया मॉडल लेना है ते सोनी ब्रेविया 3 मिलेगा।
1: अच्छा जी,
2: ते ओ भी $2200 तो $1599 दा,
1: 85 इंच। ठीक है,
2: ते जे तुसी सैमसंग लेना है ओ भी मिनी LED मिलेगा, लेटेस्ट 2026 दा नवा मॉडल, ओ भी $1599 च। $700 तुसी 85 इंच ते भी सेव करने हैं। ते जे 98 इंच लेना है $1500 दी सेविंग,
1: $1500
2: ਦੀ ਸੇਵਿੰਗ ਹੈ। $3500 ਵਾਲਾ 98 ਇੰਚ $1999 ਵੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਪੇ ਕਰਨਾ।
1: ਸਮਾਨ ਕੋਈ ਲੈ ਲਿਓ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਅਪਲਾਂਸਿਸ ਤੋਂ, ਚਾਹੇ ਫਰਿੱਜ, ਫਰਿੱਜਾਂ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਮਸਾਜ ਵਾਲੀ ਚੇਅਰ ਆ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਲੈਣਾ 6 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚੋਇਸ ਆ, ਵਿਆਜ ਕੋਈ ਨੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਐਡਰੈਸ ਹੈ 801 ਡਰਾਈਵ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਬੋਵੇਡ ਦੇ ਚੰਗਿਊਸੀ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਹਾਂਜੀ
2: 905-450-2828 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਵੀ ਲੈਣਾ ਹੋਲਡ ਕਰਾ ਦੋ ਫਿਰ ਸ਼ੋਰੂਮ ਚ ਆ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਡਿਲੀਵਰੀ ਸਕੈਜੂਅਲ ਕਰਨਾ ਜਦੋਂ ਵਾਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਲੋਐਸਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਹਾਈ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਟੀਵੀਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ 4K ਸਮਾਰਟ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੀਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਮਿਲ ਰਹੇ ਆ ਬ੍ਰੈਂਪਟਨ ਟੀਵੀ ਐਂਡ ਅਪਲਾਇੰਸਿਸ 905-450-2828 905-450-2828

0: For advertisements and information,
1: साडे हेड ऑफिस नु कॉल करो 416-725-2551 416-725-2551
2: Study visa, express entry, Canadian express entry, spousal file, parents PR, super visa, nanny, work permit, farmer, investor, ya self-employed di file. Gal ki immigration di har problem da solution lain lai. Community de jaane pehchane ate tajrubekar immigration consultant Gary Virk nu milo.
3: Koi case refuse ho gaya ya appeal te chala gaya, hove immigration da koi bhi masla, hamesha yaad rakho ikko hi na ate ikko hi tha. CIC Immigration. Hune hi call karo 416-456 416-456-6161
4: कनेडा विच रहंदे हुए हर परिवार को लाइफ इंश्योरेंस होनी बहुत जरूरी है अपने परिवार दी फाइनेंशियल सिक्योरिटी ते फ्यूचर प्लानिंग ले
5: ऐसे लई मैं अपनी ते वाइफ दी इंश्योरेंस पॉलिसी प्राइम इंश्योरेंस ते सिमराज सिद्धू तो ही करवाई है
6: जेकर तुसी भी किसे तरह दी लाइफ इंश्योरेंस मॉर्गेज इंश्योरेंस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस क्रिटिकल इलनेस इंश्योरेंस बारे सोच रहे हो ता सब तो वध कवरेज ते सही पॉलिसी तुहानू सिमराज सिंह सिद्धू ही दवा सकते ने पेरेंट्स लई सुपर वीजा इंश्योरेंस या विजिटर वीजा इंश्योरेंस दी बेस्ट कोट लई हुणे कॉल करो 416-456-3381 ते 416-457-3381 ते
4: नाली जेकर तुसी कोई इंश्योरेंस पॉलिसी पहले ही लई हुई है तो तुसी बहुत ही ज्यादा पैसे पे कर रहे हो बिल्कुल फ्री विच पॉलिसी रिव्यू करवा के तुहाडे पैसे बचाउणगे हुने ही सिमराज सिंह सिद्धू नु कॉल करो 416-457-3381 416-457-3381